द सलोर बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कुमचे द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा कुमचे प सलोर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और ये वाजे दा ना द दग डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कुमचे प सलोर सौ रुपए बाने द सलोर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कुमचे द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा डेर बेहतरीन फार्मूला दा कुमचे प सलोर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो

बिल्कुल जनाब, जमंगा प्रोग्राम नन स्पॉन्सर शबे दे अरीज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइट हेल्थ साइंसेज सवाबी चितासुल रौड़ी सम डेर ज्यात गर्ल शमीर कोर सुना चरतक जी खपल जमंग द सवाबे सिमे जमंग स्टूडेंट्स डेर ज्याता फायदा हासिलवी मंग सारा दे अरीज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइट हेल्थ साइंसेज सवाबी चर तक चीज पखवाला द इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस अखलमा द मौजूद ये मलता द हाई क्वालिफाइड फैकल्टीज द डीर तकड़ा और काबिल लेक्चररानो पजेरे निगराने की मंग सरा कोर्सेज दी वकाला डिप्लोमा चिपाई गई तासुता पागी बेस मान दी द सरकारी जॉब मेला विदेशी LHV CMW लैब टेक्नीशियन हेल्थ टेक्नीशियन एक्सरे एनेस्थीसिया सर्जिकल कार्डियोलॉजी डेंटल दो काले डिप्लोमे बिल्कुल तासो तर लासा कोली शे जिचर तके तासो था जबरदस्त अमली प्रैक्टिस होम दर कोली के दी फिजिकल प्रैक्टिस दफारा फरजाना शाहनवाज हॉस्पिटल आलमाबाद सवाबे की जमंग जबरदस्त शांत फैकल्टी जबरदस्त मैनेजमेंट जबरदस्त और डेर ज्यात कोले कोलाव वसीर बिल्डिंग मेन रोड बांधे दपासा चिचर तक इतल वर्ता आसान भी सवाबी टोपी मेन रोड बाजा बाईपास सरा सवाबी सिटी पेट्रोल पंप था बिल्कुल महामा गो पेट्रोल पंप था महामा अरीज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज सवाबी वसर वसर जनाब मंग द इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस शुरू कर दी जब की पखपला अवेलेबल हम जमा क्लासुना पखपला जाखलम वसर वसरा द कंप्यूटर कोर्सेज मंगा स्टार्ट कर दी क्लासुना बा इंशाल्लाह 15 तारीख बानी शुरू कीगी कंप्यूटर के मंग सारा कोर्सेज दी MS ऑफिस वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग दो काले डिप्लोमो के जनाब मंग सरा द फीमेल यानी द जिनको द पारा LHV औ यो नाशना हबरा कद चा उम्र द 30 ना आली दिली नो बिल्कुल लगा CMW मंग सरा कूली शी CNA उम मंग सरा चापल असम के आर्ट्स फीली दी जनाब मंग सरा जबरदस्त शानदार ऑफर दी जी मेट्रिक के चार फेली रागी दपारा ओम CNA के एडमिशन कोलिशी सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट न बिल्कुल राशे यो जबरदस्त इदारे ना पला सर्टिफिकेट डिप्लोमा तर ला सके जमंग द कांटेक्ट नंबर जान सराउली के 0346 94 9902 नो बिल्कुल राशे और जबरदस्त शानदार इदारा यो हाई स्टैंडर्ड हाई क्वालिफाइड फैकल्टी पजरे निगराने की सिपर 315-222-6480 नो बिल्कुल राशे जमंग इदारे विजिट हो गए जमंग इदारा हुई नहीं पर डिस्ट्रिक्ट सवाबे की यो मायारी यो स्टैंडर्ड इदारा

03-346-97-53-176. द इंग्लिश लैंग्वेज पर हवाले सर जमाना बिल्कुल तपोस को लीजिए दमंगा द अरीज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज सवाबी चरत के चमंगा द स्टूडेंट्स द पारा कमा तो सो काल कोल वाले मेहरबानियों के उसना द प्रोग्राम न पास को लीजिए तासु उस प्रोग्राम शोरो देखा जी چر تک چمنگا فزیکل ٹریننگ ورکو یعنی فزیکل پریکٹس چکم دے زمن اسٹوڈنٹس افارا فرزانہ شاہ نواز ہاسپٹل عالم آباد سوابے کیجیے

अरीज इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज सवाबी, बिल्कुल एडमिशन शुरू दी चर तक चमंगा एलएचवी सीएमडब्ल्यू एनेस्थीसिया लैब हेल्थ टेक्नीशियन एडमिशन मंग सर शुरू दे एक्सरे सर्जिकल कार्डियोलॉजी डेंटल दगाहुनो यानी डेंटल दगाहुनो डिप्लोमा चे कम दे दाबा के दा मंग सर तरला सकेगी द हाफिज कुरान द पारा द यतीमानानो द पारा मिशन शुरू दी चर तक चमंगा एलएचवी सीएमडब्ल्यू एनेस्थीसिया लैब हेल्थ टेक्नीशियन एडमिशन मंग सर शुरू दे एक्सरे सर्जिकल कार्डियोलॉजी डेंटल दगाहुनो यानी डेंटल

कंप्यूटर एक्सपर्ट दुआ है। आप बता सुधा द कंप्यूटर क्लासेस अखली खान। बिल्कुल जनाब, दमंग द डायरेक्टर से नंबर मिता सुता द्वद्री पीर हुई जो फिर अभी आओ लिखे सिपर 315-222-6480 दमंग द डायरेक्टर से नंबर दे हाँ। और बल दमंग द कामिल से डायरेक्टर से नंबर सिपर 346-94-90-92 बिल्कुल जनाब तासर आदले से प्रोग्राम इससे जोड़े गए मातावेलिश लेक्चरर आर जे इमरान द इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस पर अरिज इंस्टीट्यूट के जपखपल वाखलम इंशाल्लाह तासो मुतमईन है कतासो चारे बार मलकुनो तजे इंग्लैंड तजे अमेरिका तजे कनाडा तजे या नूर तालिमी दासी वीजा बांधे जे नो बिल्कुल तासो इंशाल्लाह जो तैयार हूं मां बिल्कुल जनाब जमंग नंबर जान सरूली के द प्रोग्राम नपस के तासु चारी माता काल कोल वाले द इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पर हवाले सरा नो बिल्कुल नंबर जान सरूली के से पर 346-97-53-176 बिल्कुल राशे और तासु यकीन का जबदा खबर हो कम छे माँ हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स तैयार कर दिया होगा बार मुल्कों की कम दे अगी अखबल हेदमात की अखबल नौकरे की अखबल जॉब्स की नो कतासु मैसेज उसका तासुर रिप्लाई भी आ रहा सुधर कुमा जगह दे टाइम के प्रोग्राम दिन प्रोग्राम नफस इन तासर भी पूरा मालूम दरकुम द इंग्लिश लैंग्वेज पर हवाले सरा ओके।

0: रेडियो दिलबर, अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर, लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
1: We'll be back right after the commercial break.
2: द एलोपैथिक औ द होम्योपैथिक द द्वाणु इलाजुन ना ना उम्मीद शु बीमारानो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो पे खबर न बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणी सुविधा के तासु के

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसेसरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 03313394941 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम।
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मद्धम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 03313394941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा दिल से दुआ, कुदरती शिफा दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
0: ज्वानी द ज्वानको न बगैर निमगिड़ी हो कुचरता ददग ज्वानको पवख बाने गम उनकलेशी नो प रारवान वख की दग ज्वानके स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो

बाहर में मौज। अरे गठा काला क्यों मैं सेजा बाहर में मौज। मुई पकोर के मौज ना बाहर में मसेजा मुई दा मीना बा बदनाम शी मने दुई ना पुई किसम खैर दा ए आई सॉन्ग ने पदी बारे कता से ना पुई के चाड़े अंदाज के वेरे कले करे वो गलती खबर ही मुख्य कोजा सकलते लेकिन ये उठा के गलत हुई।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज,
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस चैनल।

0: मेरी जिंदगी एक बंद किताब है
1: मोहब्बत
0: जिसे आज तक किसी ने खोला ही नहीं,
1: रुसवा की
0: जिसने खोला उसने पढ़ा ही नहीं,
1: मेरे दिल के
0: जिसने पढ़ा वो समझा ही नहीं,
1: ये कैसे
0: और जो समझ सका वो मिला ही नहीं।

0: फिक्र तो आज भी तेरी करते हैं। बस जिक्र कर दे का हक अब न रहा।
1: मैं रुल दिया मारी मारी, मैं साजा हरी हरी,
0: खुद को खोने का पता ही नहीं चला, किसी को पानी की यू इंतहा कर दी।
1: हरा है वो ही नहीं।
0: ये भाई ये सुन,

0: तेरे बगैर सब कुछ होता है, बस गुजारा नहीं होता।
1: गुजरना ही नहीं मुझको तेरी गलियों से,
0: इतने अनमोल तो नहीं पर हमारी कदर करना, शायद हमारे बाद हम जैसे न मिले।

0: कुछ इस रास थोड़ा है तालुकों से,
1: मैं कह रही हूँ तो बारी बारी
0: कुछ इस सदा से तोड़ा है ताल्लुक उसने, मुद्दत से ढूंढ रहे हैं कसूर अपना, औकात से ज्यादा मोहब्बत कर ली इसलिए बर्दाश्त से ज्यादा दर्द मिला।

0: मेरा तुम ये मत समझना हमारा कोई नहीं, अरे तुम ये मत समझना हमें कोई नहीं चाहता, तुम अगर छोड़ भी दोगे तो मौत तो अपना ही है ले जाएगा।
1: कोई पत्थर है मेरी दाएं इसके नीचे।
0: अच्छा हुआ तू बेवफा हो गया,
2: उदारा मुझको
0: खुद गर्ज लोग किसी की नहीं होते।
1: याद सुन ले तू कभी सुन ले मेरी अर्जी,
0: मुद्दत लगती है अपना बनाने में। लोग लम्हों में पराया कर देते हैं।
1: तेरी खुद गर्जी मेरे हम दर्द बेदर्दी।
0: मोहब्बत तो दूर की बात है, तुम मेरी नफरत को भी तरसोगे।

0: ये है रेडियो दिल पर आपकी दिल की आवाज।
1: मामू का बोका खुले दे बोका नोटिस।